0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: On the dial.
6: This show is brought to you by.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: Adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
8: Rock that, don't stop, rock that, don't stop, stop, stop, stop.
9: Get a deep breath of that alkaline air.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today.
8: Avengers Endgame is heading back to theaters, and its appetite for its return has already rewritten the record books. The trailer for Avengers Endgame Encore pulled 77 million views in its first 24 hours. The scale of that figure comes into focus against what re-released trailers have historically managed. The September 25 theatrical run doubles as a launchpad for Avengers Doomsday, offering an exclusive look at the December 18 release.
9: City FM 89.
10: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
12: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
15: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: City FM 89. We're playing your song.
16: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
17: Temptation, come show me what I've been missing, yeah, yeah. Show me what you're working with. Put that body in motion.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
3: सिटी एफएम 89. We're playing your song.
6: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.
10: Chica chica, Louis Benin chica. Tiani bomba bomba atomica.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
5: पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अली नूर इन एन एक्सक्लूसिव लाइव कॉन्सर्ट सीरीज अक्रॉस पाकिस्तान. From the timeless anthems that defined a generation to the music that continues to inspire millions, the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
6: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.9.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
3: खुली बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
6: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
7: खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माँ और बच्चे की बेहतर गजाइयत के लिए अहम इकदाम कर रही है। सूबे में प्रोविंशियल न्यूट्रिशन सेल और SUN यूनिट के जरिए गजाई किल्लत के खात्मे पर काम जारी है। हमल से लेकर बच्चे की जिंदगी के पहले 2 साल यानी पहले 1000 दिनों में माँ और बच्चे की गजाइयत, दूध पिलाने और बेहतर निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। माओं को मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जबकि नौ उम्र लड़कियों को आयरन और फोलिक एसिड फराहम किया जा रहा है। गजाई किल्लत का शिकार बच्चों के इलाज के लिए कम्युनिटी की सतह पर भी इकदाम जारी है। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में 27 मॉडल ब्रेस्ट फीडिंग और नर्चरिंग केयर रूम्स कायम किए गए हैं, जहां माओं को दूध पिलाने और बच्चों की बेहतर निगहदाश्त के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। ये इकदामात सिर्फ आज की सेहत नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सेहतमंद माएँ, सेहतमंद बच्चे और मजबूत खैबर पख्तूनख्वा। गजाइयत को तरजीह दें, अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारें।
8: ये पैगाम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
1: City FM 89.
6: We are playing your song.
9: You're listening to
10: The Rush Hour.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
7: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
8: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
7: अभी बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना.
8: इन्वेस्ट पार्क?
9: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
8: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
10: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
1: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we're going to be talking about watches. So you all know I love a good traditional watch. We've also spoken about the type of style of watches I like, which are more minimalistic, smaller dial, you know, a slimmer profile. I just don't like a junky watch. And I was actually at a lunch yesterday discussing this with some friends, and we all realized that the whole chunky, like Submariner, even,

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
4: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग एवरीबॉडी गो
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
6: Don't adjust your dial. This is City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds. Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
2: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram,
3: Twitter,
2: Vimeo,
3: on SoundCloud.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
5: City FM 89
6: On the dial You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.

0: Your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: फॉलो अस एट CityFM89 ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वीमियो ऑन साउंडक्लाउड
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
5: CityFM 89 We're playing your song
6: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.
11: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.
12: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.